अरे फिर महेश मेरा वो मात पिताता ये भैया जिनके कोखिया ली नया ओतार। सकल पंज के राम राम गुरु जी के बंदगी, सकल पंज के राम राम गुरु जी के बंदगी। मत करो गुमान भैया थोड़ा जिनके जिंदगी, मत करो गुमान भैया थोड़ा जिनके जिंदगी। जिनगी में जिनगी मनुष्य तन पाल के, जिनगी में जिनगी मनुष्य तन पाल के। सब भाई में मिलके रहो या उसी इस नवाय के, सब भाई में मिलके रहो या उसी इस नव। अरे राम राम प्रहलाद पुकारे ये भैया, अब तो गोपी